तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो हो राखन हार दयाला, नानक करके गोले, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसै गुरु के, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद दिठे सच्चे पात साहो, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह हो, सिर साहांद साहो, जिस पास बैठिया सोही है, सब नांदा वे साहो, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਸਾਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ।

ख्वार हुए सब मिलेंगे, बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जीओ। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां, श्लोक इको ओंकार। सतगुर प्रसाद आद गुरे नमें, जुगाद गुरे नमें, सत गुरे नमें, श्री गुरुदेव नमें। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो जास बिसंबर एक, वेद प्राण सिमर सोधाखर।

0: सुखमृत प्रभ नाम
1: भगजना के मन विश्राम रहाओ।
0: प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे
1: प्रभ के सिमरन दु जमन से
0: प्रभ के सिमरन काल पर हरे
1: प्रभ के सिमरन दुश्मन करे
0: प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे
2: प्रभ के सिमरन
1: अनदिन जागे
0: प्रभ के सिमरन भव न व्यापे
1: प्रभ के सिमरन दुख न संतापे
0: प्रभ का सिमरन साध के संग
1: शरण निधान नानक हर रंग
0: प्रभ के सिमरन हृदय सिद्ध नौ निध
1: प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा
1: प्रभ के सिमरन बिते दूजा
0: प्रभ के सिमरन तीर्थ इशनानी
1: प्रभ के सिमरे दरगे मानी
0: प्रभ के सिमरन होय सो भला
1: प्रभ के सिमरन सुफल फला
0: हे सिमरै जनाब सिमराए
1: नानक ताके लागो पाए
0: प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा
1: प्रभ के सिमरन सब ते ऊंचा
0: प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे
1: प्रभ के सिमरन सब की सीजे
0: प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा
1: प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा
0: प्रभ के सिमरन मन की मल जाए
1: अमृत नाम रीत माए समाए
0: प्रभ जी वसे साध की रसना
1: नानक जन का दास
0: प्रभ को सिमरै से तन बनते
1: प्रभ को सिमरै से पत बनते
0: प्रभ को सिमरै से जन परवान
1: प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान
0: प्रभ को सिमरै से बे मोहताजे
1: प्रभ को सिमरै सदा अपनासी
0: प्रभ को सिमरै से सुखवासी
2: प्रभ को सिमरै सदा अपनासी
0: सिमरन ते लागे जन आप दयाला
2: नानक जन की मंगेर वाला
0: प्रभ को सिमरै से परोपकारी
2: प्रभ को सिमरै दिन सत बलिहारी
0: प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे
2: प्रभ को सिमरै दिन मुख सुहावे
0: प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता
2: प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता
0: प्रभ को सिमरै तिन अनंत कनेरे
2: प्रभ को सिमरै बसे अंधेरे
0: संत कृपा ते अनदिन जाग
2: नानक सिमरन पूरे भाग
0: प्रभ के सिमरन कार्ज पूरे
2: प्रभ के सिमरै कबू न चूरे
0: प्रभ के सिमरन हर गुरबानी
2: प्रभ के सिमरन सहस मानी
0: प्रभ के सिमरन निचलासन
2: प्रभ के सिमरन कमल विहासन
0: प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार
2: सुप्रभ सिमरन का दिनवार
0: सिमरै से जन जिन को प्रमया
2: नानक जन जन सन्नी पाया
0: हार सिमरन कर भक्त प्रगटाए हार सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन धारी सब धरना हर सिमरन।

0: जय मार के गन जाए न कोसा,
1: हर का नाम हो संतोषा।
0: जय पंडे में अंत द्वारा,
1: हर का नाम संगुजियारा।
0: जहां पंत तेरा को न सियानु,
1: हर का नाम तय नाल पहचानु।
0: जय महा प्यान तपत बौ काम,
1: तय हर के नाम की तुम ऊपर छान।
0: जहां त्रिका मन तुझे करखे, भक्त जना की वर्त नाम,
1: संत जना के मन विश्राम।
0: हर का नाम दास की ओट,
1: हर के नाम उदरे जन कोट।
2: हर जस करते संत दिन रात।

0: जन कह उठस्ताणी
1: प्रताप जन अवर न जानी
0: ओत पोत जन हर असराते
1: सुन समाद नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का भगत प्रगट नहीं छपे
0: हर की भक्त मुक्त भो करे
1: नानक जन संकेते करे
0: पार जाते हर को नाम
1: काम देन हर हर गुण गाम
0: सब ते उत्तम हर की कथा
1: नाम सुनत दर्द दुख न उठा
0: नाम की महिमा संत हृदय
1: संत प्रताप दुख सब नसे
0: संत का संग बड़ भागी पाई।

0: रमैया के गुण चेत प्राणी
1: कवन मूल देव कौन दिष्टानी
0: जिन तू सा सवार श्रृंगारिया
1: गर्भ गम में जिने उबारिया
0: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध
1: पार जो पन पोजन सुख सुध
0: तीर्थ प्याओ पर साख सैन
1: मुख प्यायो बैठ को दैन
0: यह निर्गुण गुण कछु न बुझै
1: बख्श लियो तो नानक सी जे
0: यह प्रसाद तारु पर सुख बसै
1: सुत प्राद मीत बलिता संग से
0: यह प्रसाद पी वैशी तल जला
1: सुखदाई पवन पाओ ममता
0: यह प्रसाद भोगे सब रसा
1: सगस मिली संसार बसा
0: दीने हस्त पाव कर नित रसना
1: तिसे त्याग अवर संग रचना
0: ऐसे दोख मुड़ंद व्यापै
1: नानक काढ़ियो प्रभापे
0: आद अंत जो राखण हार
1: तिसे अप्रीत न करे गुहार
0: जाकी सेवा नवनित पावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे
1: ताको अंदर जान तुरे
0: जाकी टहल पावे दरगा
1: मारे तिसे बिचारे मुदे जान
0: सदा सदा हे भूलन हार
1: नानक रातन हार अपार
0: रतन त्याग कौटी संग रचे
1: सा चोट चूट संग मचे
0: जो छड़ना सो अस्थिर कर माने
1: जो हो वंसो दूर पराने
0: छोड़ जाए तिसका श्रम करे
1: संग साई तिस पर हरे
0: चंदन लेप उतारे दुए
1: गर्द प्रीत पसंद संगोए
0: अंध रूप में पतित बकराल
1: नानक काढ़ियो प्रभु दयाल
0: करतूत पशु की मानस जात
1: लोग पचारा करे दिन रात
0: बाहर पेख अंतर मल माया
1: छपस नाई कच करे छुपाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
1: अंतर व्यापे लो सुहान
0: अंतर अगन बाहर तन स्वा
1: गल पात कैसे करे आता
0: जाके अंतर बसे प्रभाप
1: नानक तेजन से समाध
0: सुनंदा कैसे मार्ग पावे
1: कार गहले हो निभावे
0: कहां बुझार्थ बुझे डोरा
1: निस्कई तो समझे कोरा
0: कहां बिसन पद गावे गुंग
1: जतन करे तो भी सुरपंग
0: है पिंगल पर्वत पर भवन
1: नहीं हो तू उस गवन
0: करतार करना मैं दिन बेंती करे
1: नानक तुमरी कृपा करे
0: संग सहाय सो आवे न चीत
1: जो बेराई ता से प्रीत
0: के ग्रह भीतर बसे

0: तेरे
1: तुमरी कृपा में चूकने रे
0: ओए ना जाने तुमरा अंत
1: ऊचे ते ऊचा भगवंत
0: सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी
1: तुम ते होए स्वाज्ञाकारी तुमरी।

0: दस वस्तु ले पाचे पावे
1: एक वस्तु कारण भी को दुआवे
0: एक पीना दे दस पीहर ले
1: तो मुड़ा को का करे
0: जिस ठाकुर स्यो नाही चारा
1: तो कीजे सत नमस्कार
0: जाके मल्ला का प्रमीठा
1: सर्व सुख ताऊ मन उठा
0: जिस जन अपना हुक्म नाया
1: सर्व तोक नानक तिन पाया
0: अगंत शाप नी दे रास
1: खात पीत पर जय अनुरास
0: अपनी अमान कश बहर शाले
1: अपनी अनुरोध करे
0: अपनी प्रतीत आप ही खोवे
1: और उसका विश्वास न होवे
0: जिसकी वस्तु तिसा के रखे।

0: जय प्रसाद शति अमृत खाहे
1: तिस ठाकुर को रख मन माहे
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे
1: तिसको सिमरत परम गत पावे
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदर
1: तिसे ध्याय सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पै सिमरो तिस रसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ध्याय ध्यान जोग
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
1: तिसे त्याग तव लुभावे
0: जय प्रसाद सुख से सोई जय
1: मन आठ पै ताका जस कवि जय
0: जय प्रसाद तुझ सब को माने
1: मुक्ता को जस रसन बहाने
0: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जप दर कह मान पावे
1: नानक पासे ती कर जावे।

0: प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके,
1: मन सरनी पड़ता तिर प्रताके,
0: जे प्रसाद तुझको न पहुँचे,
1: मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे,
0: जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे,
1: नानक ताही भगते,
0: जे प्रसाद भूखन पहरी जय,
1: मन ते सिमरत को आस कीजे,
0: जे प्रसाद अशुभ हस्त सवारी,
1: मन ते प्रभु को न सारी,
0: जे प्रसाद बाग मिलक धना,
1: रात रोए प्रभु अपने मना,
0: जिन तेरी मन मणत बनाई,
1: उठत बैठ सज से आई,
0: तिसे त्याय जो एक लख है,
1: या हुआ नानक तेरी रखे,
0: जे प्रसाद करे पुन बहुदान,
1: मन आठ पैर कर तिसका ध्यान,
0: जे प्रसाद तू आचार बिहारी,
1: तिस प्रभु को सा सा सिताई,
0: जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
1: सो प्रभु सिमरो सदा अनूप,
0: जे प्रसाद तेरी नेकी जात,
1: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात,
0: जे प्रसाद तेरी पत रहे,
1: गुर प्रसाद नानक सच के,
0: जे प्रसाद सुने करनाद,
1: जे प्रसाद देखे बिस्मात,
0: जे प्रसाद बोले अमृत रसना,
1: जे प्रसाद सुसहजे बसना,
0: जे प्रसाद हस्त कर चले,
1: जे प्रसाद संपूर्ण फले,
0: जे प्रसाद परम गत पावे,
1: जे प्रसाद सुसहज समावे,
0: ऐसा प्रभु त्याग अवरकत लागो,
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जल में कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
1: जैसे सूर्य सर्व को शोभ
0: ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान
1: जैसे राज धन को लागे तिल पुवान
0: ब्रह्म ज्ञानी कह तीर्ज एक
1: जो खुश होता को खोटे को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ
1: नानक जो पावो का सह स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैला लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रकाश
1: जैसे तारु पर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
1: मन अपने है सब ते ऊंचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
1: मानव जिन प्रभाव करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सिमरै पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसे
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मलता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा
0: ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा
1: तावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी कह हुई सुफला
1: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे दर्शन
0: ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मूर्त अगत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बीता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
1: ब्रह्म ज्ञानी का वट प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श वट भागी पाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पीत
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए अध्यक्ष
1: ब्रह्म ज्ञानी का थक
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म

ताए साई जुगत कारणम के सगले ठाओ आपे करन करावन जोग कसरियो आप होए अनंत रंग।

0: कोट पय तीर्थवासी
1: कई कोट ब्रह्म प्रमेयदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट कपीश्वर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान धारे
1: कई कोट कम का विचार
0: कई कोट नवतन नाम त्यावे
1: नानक तेरे कायन न पावे
0: कई कोट पय अभिमानी
1: कई कोट अंध ज्ञानी
0: कई कोट कृपण कठोर
1: कई कोट अज्ञान निवारे
0: कई कोट पर दर्व को हिरे
1: कई कोट पर दुखना करे
0: कई कोट माया श्रम माही
1: कई कोट पर देव श्रम माहे
0: जित तलावो तित तित लगना
1: नाने करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट आगे रस होगी
0: कई कोट पंखी सर्व उपाय
1: कई कोट पासल कृष्ण जाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर
1: कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट शशियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव दानव दक्षिण छत्र
0: सगल सामग्री अपने सूत धार है
1: नानक जिस जिस पावे तिस निस्तार है
0: कई कोट राजस तामस सातक
1: कई कोट वेद
0: कई कोट किए रतन समुंद
1: कई कोट नाना प्रकार
0: कई कोट किए किरजी चिरजी
1: कई कोट किए स्वरण तीव्र
0: कई कोट जखे किनर पिशाच
1: कई कोट मूल प्रेस
0: सब ते नेरे सब हूं ते दूर
1: नानक आपलिप त्रिया भरपूर
0: कई कोट पाताल के वासी
1: कई कोट नरक सुर निवासी
0: कई कोट जन्मे जीव है मरे
1: कई कोट भोजो निकरे
0: कई कोट बैठत ही खाहे
1: कई कोट काले हर पाए
0: कई कोट किए तनवंत
1: कई कोट माया बैठित
0: जय जय पाण तह तह राखे
1: नानक सब कुछ प्रभु
0: कई कोट पए बैरागी
1: राम नाम संत निलागी
0: कई कोट प्रभु को खोजंते
1: आत्म में बार बार लहंते
0: कई कोट दर्शन प्रभु प्यास

क्रोध विकराल कबू होए वह बड़ राजा कबू अब कीर्त में आवे जो प्रभु राखै ते भी रहे कबू होए पंडित करे बख्यान कबू तट तीर्थ इशनान।

0: राष्ट्रपति
1: जिसके अंतर राज विमान
0: सो नरक पति हो स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो प्रतिष्ठा का जंत
1: आपस को कर्मवंत कहावे
0: जन्म ने बो जोन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूल कंदा ज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नानक यहां मुक्ता की सुख पावे
1: धनवंता होए कर गरबावे बहु लश्कर मान को ऊपर करे आस सबते आप जाने बलवंत किसे न बदे आप अहंकारी गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान कूट कर्म करे हों तारे अनक तपस्या करे अहंकार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे आपस को जो भला कहावे सर्व किरी जा का मन होए जब लग जाने मुझते कछ होए जब ही जाने मैं कुछ करता जब तारे कौ बैरी मीत जब लग मुँह मगन संगमाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे सहज कटे लका उठता वे अनक भोग भिख्या के करे बिना संतोख नहीं कौ राज नाम रंग सर्व सुख हुए कर्ण करावन आपे आप कर्ण करावन करने हार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए जो कुछ कीनो सो अपने रंग
0: संते

0: हार सब कुछ उसका करने हार
1: उससे बिन कहो किछ होए
0: अंतर एक सोए
1: अपने चलत आप करने हार
0: करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माही सत सत सत प्रभ स्वामी सच सच सच सब कीना भला भला भला तेरा रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी पवित्र पवित्र।

0: संत के दुखन यार जाकट है,
1: संत के दुखन जानते नहीं छूटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नर में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन सो बाते ही,
0: संत के हत्ते को रखे ना कोई,
1: संत के दुखन थान रख होए,
0: संत कृपाल कृपा जी करे,
1: नान सत्संग निंदक नी धरे,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काज न लवे,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत के दुखन जग जोन कमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन सब को चले,
0: संत के दुखन तेज सब जाए,
1: संत के दुखन नीच जाए,
0: संत दुखी का थाओ को नाही,
1: नानक संत पावे ता होए भी गत पाए,
0: संत का निंदक महा अतताई,
1: संत का निंदक खिंडक न पाई,
0: संत का निंदक महा अतियारा,
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक रास्ते हीन,
1: संत का निंदक दुखिया हीन,
0: संत के निंदक का सर्व रोग,
1: संत के निंदक को सर्व रोग,
0: संत के निंदा दुख में दुख,
1: संत पावे ता उसका भी हो मोख,
0: संत का दुखी सदा अपवित,
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
0: संत के दुखी को डान लागे,
1: संत के दुखी को सब त्यागे,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा भिखारी,
0: संत का दुखी जन्म मरे,
1: संत की दुखना सुखते करे,
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ,
1: नानक संत पावे ता ले मिलाए,
0: संत का दुखी अदबीज ते टूटे,
1: संत का दुखी ते काय काल न पूजे,
0: संत के दुखी को ध्यान प्रमाइए,
1: संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: जो सांस मिला फिर तकी लोता,
0: संत के दुखी की जड़ किछ नाही,
1: आपन बीज आपे ही खाए,
0: संत के दुखी को अवर न रखनहार,
1: नानक संत पावे ता ले उबार,
0: संत का दुखी इउं बिललाए,
1: जो जल बिहुं मछली चढ़ पड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं रह जाए,
1: जो पाप कीर्तन निद्रा पे,
0: संत का दुखी छुटे अकेला,
1: जो बुआड़ के खेत माए भेला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सत मिथ्या कहत,
0: कीर्तन अंधक का तुर ही बया,
1: नानक दोष पावे सोई थिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
1: संत के दुखी को करके मिलेश जाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइए,
1: संत का दुखी न मरे न जाइए,
0: संत के दुखी की पूजा न आशा,
1: संत का दुखी

मानु कीट एक बिरथी सब जान, जिसका दियर है अगाए, मारे रख है एक आप, जिसका हुकुम बुझ सुख होए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए।

0: रंग
1: चरण चलो मार गोविंद हर हर कर्म श्रवण हर कथा बटभागी ते जन जग माहे राम नाम जो करे विचार मन तन मुख बोले हर मुखी एको एक एक पछाने नाम संग जिसका मन मानिया गुरु प्रसाद अपना सुच है साध संग हर हर जस कहत अनदिन कीर्तन केवल बख्यान एक ऊपर जिस चन की आशा हर ब्रह्म की जिस मन भूख जिसको हर ब्रह्मन चित आवे जिस पर अपना कृपा करे जैसा साथ ऐसा दृष्टाया सोदत सोदत सोदत सीझिया जब देखो तब सब किस मूल न किस जन्मे न किस मरे आपन जावन दृष्ट अंदृष्ट आपे आप सकल मैं आप अविनाशी ना ही किस खंड अलख भेव पुरख प्रताप जिन प्रभु जाता सो सो बावंत प्रभ के सेवक सकल उदाहरण आपे में लय कृपाल उनकी सेवा सोई लाग है नाम जपत पावे विश्राम जो कुछ करे सो प्रभ कै रंग सहज सुभाए हो वै सो हुई प्रभ का किया जन मीठ लगाना जिससे उपजे तिस्माहि समाए।

0: बिदकीनो विस्थार नाना चलित करे खिन माही नाना बिदकर बनत बनाई सब कट तिसके सब तिसके ठाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे पुरिया सब पवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए सत जा का सत स्थान करतूत सत सत जा की बाणी सत कर्म जा की रचना सत सत करनी निर्मल निर्मली सत नाम प्रभ का सुखदाई सत वचन साधु उपदेश सत नृत बुझै जे कोए आप सत किया सब सत जिसकी सृष्ट सुकर्ण हार करते की मित न जाने किया दुश्मन विषम भय विस्माद प्रभ कै रंग राज जन रहे
1: जागे संग करे संसार
0: का सेवक सोवट भागी
1: जागे संग लेव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद ध्यान एक पल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी पे सच अष्टपदी
0: सतगुरु सिख की करे प्रतिपा

0: आप कर देखै
1: संकोचे तो ना मिले के
0: जय अभिगत भगत तह आप
1: जय प्रसाद संत प्रताप
0: दुह पाख का आपे तनी
1: गुरु जी शोभा उनु बनी
0: आपे कौतुक करै अनंत चोज
1: आपे हस को गन्ने

0: संत संग अंतर प्रभ डीठा
1: प्रभु का लागा मीठा
0: सगल समग्री एक कट माहे
1: नित्य
0: अमृत प्रभ का नाम
1: देही मैं इसका विश्राम
0: सुन स्वाद अनहत तह नाद देखिया जिसे आप दिखाए सो अंतर सो बाहर अनंत धर्म माही आकाश पयाल वन तिन पर्वत है पार ब्रह्म कौन पानी बह संतर माही रिश्ते भिन्न नहीं कोठाओ वेद पुराण सिमृत में देख वाणी प्रभ की सबको बोल
1: है।

जना सुने शुभ बचन जन जाता तिसकी रहत जो जो होए सोई सुख माने अंतर बसे बाहर पियो ही आप सत किया सब सत जिस पावे ता करे विस्तार अनिकला लखी नह जाए कवन निकट कवन कहिए दूर अंतर्गत से आप जनाए सर्व भूत आप वर्तारा।

दीनन की प्रतपाल करें नित संत उबार गनी मन गारे पाच पशु नग नाग निरादप सर्व समय सबको प्रतपारे पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे दीन दयाल दया निद दुखन देखत है

साध संगत गुर शब्द सुन हृदय न वसै भाग प्राणी। साध संगत गुर शब्द सुन गुर उपदेश न चित धरंदे, जिस कारण साडा अंदरला मन गुरबाणी विच दर्साए आत्मक ज्ञान नूं मनन लई तैयार ही नहीं हुंदा। पढ़िए गुणिए क्या पढ़िए गुणिए क्या कथिए जा मुंडों कुठा जाए। पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए अनभव भाव न दरसै। लोहा कंचन हिरन होए कैसे जो पारसै न परसै। इस तरह गुरबाणी दे आत्मक ज्ञान दे अंतरी भावां अथवा अनुभवी तत् ज्ञान नूं समझन जानन अथवा कमाउण दा सानू ख्याल ही नहीं आउंदा। हाँ जी, गुरबाणी दे अंतरी भाव अथवा अनुभवी तत् ज्ञान नूं समझन जानन अथवा कमाउण दा सानू ख्याल ही नहीं आउंदा। लोड़ ही नहीं भसदी, उत्साह ही नहीं आउंदा, खेचल ही नहीं करदे, उदम तां की करना सी। असी इस धुरों आई सतगुरां दी बाणी नूं पाठ करन, पूजा करन, भाईचारक विहार गरजां पूरियां करन, माया कमाउण, राग दे प्रगटावे, ज्ञान घोटन, वाद विवाद करन, मन्नता मनाउण, फोका प्रचार करन। हाँ जी, फोका प्रचार करन, भले भलेरे बरन, धार्मिक ठाठ बाठ रचाउण लई ही वरतदे हन। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੁਰੋਂ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਗਿਆਨ, ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਲੋਕ।

0: नानक चाओ ए हो नानक चाओ ए हो
1: नानक चाओ ए हो नानक चाओ ए हो
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: प्रसाद सुगंध तन लावे,
1: इसको सिमरत प्रमगत पावे।
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदिर,
1: इसे जाय सदा माने अंदर।
0: जय प्रसाद गृह संग सुख बसना,
1: आठ पैर सिमरो दिस रसना।
0: जय प्रसाद रंग रस भोग,
1: नानक सदा त्यागे ध्यावन जोग।
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हडावे,
1: इसे त्याग तव लुभावे।
0: जय प्रसाद सुख सेज सोई जे,
1: मन आठ पैर दाता जिस काबिजे।
0: जय प्रसाद तुझ सब कौन माने,
1: उदा को जस जस मखाने।
0: जय प्रसाद तेरो तेरो रहता धर्म, प्रभ जी जपत दरगह मान पावे। जय प्रसाद आरोग कंचन दे, जय प्रसाद तेरा ओला रहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिंदर ताके, जय प्रसाद तुझ को न पहुँचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे, जय प्रसाद आप भूखन पही पहरी। जय जय प्रसाद अश्वहस्त अस्फारी, जय प्रसाद बाघ।

0: जय प्रसाद करे पुन बहुदान
1: पैर कर जिसका ध्यान।
0: जय प्रसाद तू आचर व्यवहारी
1: सास सास धारी।
0: जय प्रसाद तेरा।

0: मन की वासना मनते डरे केवल पंथ कीर्तन संग्राचे सब ऊपर होवत कृपाल नानक हो वैष्णो परम गत पावे सगल त्याग दुष्ट का संग कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: सासंग पापा मन खोवे
0: भगवत की मधु तुम होवे
1: भगवत की टहर करे नितनी
0: मन तन पे विजन प्रीत
1: आके चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भूख

0: जाम ने नहीं चुकाए।
1: संत के दुखन नर पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो भागे हीन, संत के दुखन दान त्रस्त होए,
2: कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक सत जिंदग पी लरे,
2: संतन के दुखन
0: ते मुख पवे,
2: संतन के दुखन सरब जोन पाए,
0: संत के दुखन चंदर पाए,
2: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
0: संत के दुखन सब को चले, संत
2: के दुखन ते सब जाए,
0: संत के दुखन नीच नि जाए,
2: संतों की गाथा बनाई,
0: संत सब पावे दाए की गत पाए, संत का निंदक मात जाई, संत का निंदक निंद पाई,
2: संत का निंदक मात यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
2: संत
0: का निंदक दुनिया दीन, संत के निंदक को सदा वियोग,
2: निंदा दोख में दोख,
0: नानक संत पावे ता उसका भी होय,
2: संत
0: का दुखी किसे नहीं,
2: संत के दुखी को दान लागे,
0: संत के दुखी को सब

0: सगल संसार
1: सकल उदारण
0: आपके सेवक दुख
1: आपे मेले कृपाल
0: गुरु का शब्द जप
1: सेवा सोई लागे
0: कृपा करे
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: नानक दिन पुरख को उत्तम
1: कर
0: सदा सदा बसे।

साधु संग मिल जोत प्रगटावे नानक की हर लोचा पूर पूर्व लिखे का लिखिया पाई है अवर त्याग

0: चतुर मंगरीत
1: भेटत संग राम रवे
0: पार ब्रह्म की दरगह गवे
1: कर वचन कर न गाने
0: मंत्र तो गातम प्रत्याने
1: गागो रखियो जाका मंत्र
0: अमृत विभिष्ट पेखे होय सत
1: नहीं पाए
0: नानक जिस पावे तिस ले मिलाए
1: गाए

0: प्रसाद ऐसा ब्रह्म सपने
1: और अल्पा वेदन
0: हुए अमृत पीवे अमृत सो हुए
1: उनका नहीं करे बिना
0: जाके मन रख ले गुंतास सच दे सेवक को दे
1: माया के संग न ले
0: मन में राखे हर एक नानक प्रभु
1: दूध दे ना से अब मैं ठाड़ बताई
0: अंत पया दुख दे पाई
1: मन के मिले अंदे से
0: साधु के पूर्ण उपदेश से
1: कानर बोए बसे
0: सगल प्याद मनते ने
1: का साथ इन कृपा तारी
0: साध संग जप नाम रानी
1: चित पाई चुके ब्रह्म बने
0: सो नानक हर अर्ज श्रवण
1: को नाथ सर जन भी होई
2: कलादार जन सगली मोई
1: अपने चित पर बाप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: सर्वी
0: अंतर एक को सोए

हर की भगत करो मन लाए, संग न चालस तेरे तना, सुत मीत कुटुंब अर पनीता, राज रंग

कीमत तू ले आने, हर की भगत करो मन मीत, चरण कमल राखो मन माहे, आप जपो अवरा नाम जपावो, सार भूत सत हर को नाओ, गुण गावत तेरी रसमेल, होए चिंत बसे सुख नाल, छाड़ सियानब सगली।

0: दरबार राय बलवान तथा सते डूबाखी एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ करता कादर करे क्यों बोलो वह जो की उदय
1: दे गुना सत पैन भरावे पारम तान
2: दान बड़ी ने
0: नानक राज चलाया सच कोट स्थानी नीव दे
1: लेने धरयो छत्र श्री कर सिप्ती अमृत पीव दे
0: देव दी कड़ चोर प्राय कोई जी।

भयो तत् स्यों तत् मिलायो अंगद कृपा धार अमर सतगुरु थिर कियो अमरदास अमृत छत्र

जग और न जाहे महातम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धते मत चूके रे मन भेद विभेद न जान बियो परतश

काल समुद्र पैरू प्रगट हर नाम उदारन वसै संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारन निर्मल पेख पार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जान्यो पयो तै सम सर सोई तरन गगन नव खंड में जोत सब

ब्रह्मादिक शिवचंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरण गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख्य देवर दानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्स समावत तिसे त्याग आन को जाचे मुख दंत रसन सगल खस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत तिसे त्याग आन को जाचे मुख दंत रसन सगल खस जावत

तेरी राह हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌਣ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ।

जैसे पंछी उड़त फिरत है आकाशचारी, जारीदार पिंजरी में राखियत आन कै, जैसे गजराज गहबर बन में मदोन, बस हुए महावत कै अंकुश की मान कै, जैसे बिखिया तार बिखम बिल में पाताल, गहे साप हेरा ताहे मंत्रन की कान कै, तैसे त्रिभवन प्रत प्रमत चंचल चित, नेह चल होत मत सत

जैसी सर सरिता सकल में समुंदर बड़ो, मीर में सुमीर बड़ो, जगत बखान है। बिरखन बिखे चंदन बिरख बड़ो, तातन में कंचन अत उत्तम कैमान है। पंछियन में हंस मृगराजन में शार्दूल, रागन में श्री राग पारस पखान है। ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान गुर, सकल धर्म में ग्रहस्त प्रधान है। ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान गुर, सकल धर्म में ग्रहस्त प्रधान है। सो कहो तल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसेआए गुरु के, जन्म मरण दुख होवे सिफत खसम दी, पूरे अरसों कुरसों चटिए, तुद डिठे सच्चे पातशाहो, मल जन्म जन्म दी कटी, सज्जन सच्चा पातशाहो, सिरसा हां दे साहो, जिस पा